दोहरा दास जान कर दास पर कीजे कृपा पार आप हादय राख मोए मन क्रम वचन विचार चौपे मैं ना अंगनेशा प्रथम ना हूं किशन बिशन कब हूं ने त्याऊं कान सुने पहचान न तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत सुरग वासरग वरकरा सगरी पुरी समेत चौपाई।

अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे दारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो। हे वस्त तजी न जाए नित नित रख उर्धारो,

इतनी सेवा प्रवान करनी जी कीर्तन करद भुला दे माफी बख्शनी आवन भाई साहब कुलबीर सिंह जी दमन टकसाल वाले शहीदी हफ्ता जून 1984 घलूकर दसवंध साजरे हैं उन्होंने पासों कथा सरण करो।

हमारे प्यारे वीर पैसा भाई लखन सिंह जी ने इस शब्द का हुक्म किया सी। बड़ा अच्छा तबला बजाते ने गुरु की बड़ी कृपा है। कनेडा के वसनीक हैं तो इन्हों के हुक्म के अनुसार असी शब्द पढ़िया। एक शब्द साढ़े सत्कार जो भैन जी जो पहला अमृत जी भाई साहब भाई परमजीत सिंह जी के घरों हैं उन्होंने भी एक शब्द का मैंने हुक्म किया है तो क्या भी अखीर तक पढ़ियो तो फिर जल्दी जल्दी पढ़ देंगे तो विचकार जे करके पढ़े थोड़ा टका के पढ़िया जे मैं सत बचन तो उस उन्होंने हुक्म आते हुए मैं शब्द भगत कबीर साहब का शब्द है। गंगा की लहर मेरी टुटी जंजीर मृगशाला पर बैठे कबीर।

जिसका तन मन धन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा ताबिद निकी खटानी जिसका तन मन धन सब तिसका।

कृपा मेरी सब जुग अंतर बाज हमारी थान तनंतर कीरत हमरी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल की नी सांझ कहो नानक जो पिता पति ने पिता पूत एक रंगली ने भैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते हम अपराधी तुम बखसाते जिस पापी को मिले न टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नजरी आया खसम तू है सब न कहराया तिस पाणा सूके काष्ट हरिया तिस पाणा था थल सिर सरिया तिस पाणा था सब फल पाई चिंत गई लग सतगुर पाई हराम खोर निर्गुण को तूठा मन तन शीतल मन अमृत उठा पार ब्रह्म गुर पै दयाला नानक दास देख पै निहाला भैरो महला पंजवा सतगुर मेरा बी मोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सबसका दाता सतगुर मेरा पुरख विधाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक पाग सो लागा सेव रहाओ सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है सतगुर मेरा मार जीवाल है सतगुर मेरे की वड्याई प्रगट पई है सबनी ताई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर कहो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेविया तिस पौना व्यापै जिन गुर सेविया तिस दुख ना संतापै नानक सोदे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही पेद भैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट भया नाम लैत पाप तंते गया नाम लैत सगल पूर्वाया नाम लैत अड़सठ मजनाया तीरथ अमरा हर को नाम गुर उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अत मूढ़ सो ज्ञाना

सब में एक रया पर पूरा सो जापै जिस सतगुर पूरा हर कीर्तन ताको आधार कहो नानक जिस आप दयार भैरो महला पंजवा मोहे दुहागण आप शिगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिट्यो दुख और सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरे ग्रस्त आनंद कर कृपा पेटे मोय कंत राव तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर पय परगासा अनहद शब्द आचर्य विस्माद गुरपूरा पूरा प्रसाद जाको प्रगट पय गोपाल ताके दर्शन देख निहाल सर्व गुणा ताके बहुत निधान जाको सतगुर दियो नाम जाको पिटियो ठाकुर अपना मन तन शीतल हर हर जपना कहो नानक सो जन प्रपाए ताकि रेन विरला को पाए भैरो महला पंजवा चितवत पाप न आलक आवे बेसवा भजत किशने शरमावे सारो दिन समजूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर परे माया लग पूलो संसार आप पुलाया पुला वनहारे रच रहया बिरथा व्यवहार रहाओ पेख माया पेखत माया रंग विहाए गड़बड़ करे को

महला पंजमां। नाम हमारे अंतर जामी, नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रह्यार नाम सर्ग पूरे किनो दान।

संत संग करे जो वाद तह निंदक नाही कस साध रहाओ भगत के निंदा कंध छदावे भगत के निंदा नरक बचावे भगत के निंदा गर्व में गले भगत के निंदा ताय राज ते टले निंद की गत

का प्रभ खंडो रोग दुखिए का मिटावो प्रभ सोग न थावे को तुम थान बिठावो दास अपने को भक्ति लावो न माने को प्रभ दे तो नाम मूढ़ मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयानता का पौ नसे जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म सब सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पहरो महला पंजमा संत मंडल में हार मन बसे संत मंडल में दुत सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग

संत मंडल में जम के कछु न कहे, संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में, नाम बखानी संत मंडल का नेचो आसन, संत मंडल में पाप बनासन, संत मंडल में निर्मल कथा संत सांग हमें दुख नसा, संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुणतास संत।

कर कृपाए अपनी सेवा लाए, साधु संग सर्व सुख पाए राओ। रोग दोख गुर शब्द नवारे, नाम युक्त मन पीतर सारे, गुर भेटत मन पया आनंद, सर्व निदान नाम भगवंत।

लाए बिनसे काम क्रोध अहंकार टूटे माया मोह प्यार प्रभु की टेक रहे दिन रात पाप ब्रह्म करे जिस दात कर्ण क्राम नुहार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी करके पाए अपनी सेवा लाए नानक दा तेरी सरनाए पैरो महला पंजमा लाज मरे जो नाम ना लेवे ना ब्यों सुखी क्यों सोवे हर सिम छाड परम गत चाहे मूल बिना साखा कत आहे गुर

आठ पार कीर्तन गुण गाओ। धन हर भगत धन कन्ने हार, सरन नानक प्रापुरख पार, पहरो महला पंजमा। गुरसुप सन होए पहो गए, नाम निरंजन मन मै लय। दीन दयाल सदा कृपाल, बिंस गए सगले जंजाल। सुख सहज आनंद कने, साध संग मिटे पै परमा। अमृत हार हर सुनपने, रहाओ चरण कमल सो लागो हित। खिण में बिंसो महाप्रेत, आठ पैर हर हर जा जा, जप जाप रखन हार। गोविंदपुर गोविंद गुर आप अपने सेवक, सदा पित पारे भक्ति ना के सास निहारे। मानस की को केतक बात, जपते जमते रखे दे कर हाथ। निर्मल शोभा निर्मल रीत, पार माया मनचीत। कर कृपा गुर दीनो दान, नानक पाया नाम निदान। पैरों महला पंजमा करन कारण, सम्राथ गुर मेरा जी प्राण सुखदाता नेरा। पह पंजन अविनाशी राय, दर्शन देखा सब दुख जाए। जत कर पेखो तेरी सरना, बाल बल जाए सदगो चरना। राहो पूर्ण काम मिले गुरुदेव, सफल दाता निर्मल सेव।

जसु कर्म करे करतार सा संग होए तिस व्यवहार हर ना पत सो लागा रंग कहो नानक तिस जन के नाही भंग पहरो महला पंजवा निंदक को फिड़के संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को रखनहार निंदक मुआ निंदक कह नाल पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक सिर कर क्यों काल राव निंदक का कहया कोई न माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोरे सिर तन लगाए निंदक को दे छोड़े नाहे हार का दास किस बुरा न मांगे निंदक को लागे दुख सांगे बगले जोहरिया पंख पसार मुक्त बोलिया ता कड्या बेचार अंत जामी करता सोए हर जन करे सो निचल निचल होए हर का दास सचा दरबार जन नानक कहया तत विचार पैरों महला पंजवा दोए का जो करो अरदास जियो पिंड तन जियो

मन के बेकार मिटे प्रभ सिमरत जन्म जन्म की मैल हरी राओ जाके ग्राय मैं सगल निदान जाके सेवा पाये मान सगल मनोरथ पूर्ण हार जी प्राण पतन आधार कट कट अंतर सगल परगास जप जप जीवे भगत गुणतास जाके सेवन बिथे जाए मन तन अंतर एक त्याए गुर उपदेश दया संतोख नाम निदान निर्मल ए चो थोक कर कृपाली जलाए चरण कमल नानक नित त्याए पैरों महला पंजमा

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नावण।

तेरी कृपा में सुख निरे, कोई न जाने तुमरा अंत, चेते उचा भगवंत सगल समगरी, तुमरे सूत्र धारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी।

दस बस तूले पाछे पावे, एक बस कान मिकोड़ गुआवे, एक पी न देहे दस पी हिरले, तो मूड़ा को कां करे, जिस ठाकर से नाई चारा, ताको की जय सत नमस्कारा। जाके मन लागा प्रम मीठा, सर्व सुख ताऊ मन बूठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अकंद साहु अपनी दे रास, खात पीत बरते अंद उलास, अपनी अमान किशबौर सावले, अज्ञानी मर रोस करे, अपने प्रति आप

मिथ्या राजो वर्तन महाल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असभस्त्र मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता मिथ्या ध्रुव मोह अपमान मिथ्या अपसु पर करत गुमान आस्थिर भगत साध की शरण नानक जब जब जीवे हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर को हिरे मिथ्या नेत्र पीख पर तिरया रूपाद मिथ्या रसना भोजन स्वाद

ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सोख। ब्रह्म ज्ञानी कह दिश समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कह धीरजे ज्यो बसदा कौ खोदे कौ चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यो पावक का सह सुहाओ। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैं न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कह मनोय प्रगा जैसे धारे ऊपर आकाश।

ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का ने विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म कावेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता ब्रह्म ज्ञानी कह होए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का वट प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दस वट भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कह सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का चो कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जाए आखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर

सभी ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़े अवरा नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गात पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग सद त्यागे दुष्का संग। मन ते बिनसे सगला भरम कर पूजे, सगल पारम साध संग पापा मल खोवे, तिस भगवती कीमत उत्तम होवे, भगवंत की टहल करे नितनीत, मंतन अर्पे विष्ण प्रीत। हर के चरण हृदय सावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबोधे, राम नाम आत्म सोदे, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित कह उपदेश जज जीवे, हर की कथा हृदय सावे, सो पंडित फिर जो नावे, भेद प्राण सिमृत बुझे, मूल सुख में जाने स्थूल, चौ वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौ वर्णा में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गतोए, साध संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उधारे, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काउ जुगत कते नाम पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, राम आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंदन भाज तिन पाया, सदा निकट निकट जान, सो दास दरगह प्रवान।

संत सरण जो जन परे सो जन उदरन हार संत के निंदा नानका बोर बोरे अवतार अष्टपदी संत के दुख नार जा कटे संत के दुख न जमते नहीं छुटे संत के दुख न सुख सब जाए संत के दुख न नरक में पाए संत के दुख न मत होए मलीन संत के दुखन सोबाते हीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान पृष्ठ होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक पीतर संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जन लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन क्रमाए संतन के दुखन तृष्णा में जले संत के दुखन सब को छले संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच ने चाहे संत दुखी का था को नाए नान संत पावे ता ओए भी गत पाए संत का निंदक माताए संत का निंदक खिंटक न पाए संत का निंदक मात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजतहीन संत का निंदक दुखियार दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा वियोग संत के निंदा दोख में दोख नान संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे कानी मित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महाअहंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख न सुखते डरे संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत पावे ता ले मिलाए संत का दुखी अद भी ते टूटे संत का दुखी किते काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान भरमाइए संत का दुखी अवजल पाइए संत का दुखी अंतर दे थोथा ज्यो सास मना मृत की लोथा संत के दुखी की जड़ कृष्णाए आपने भी जापे ही खाए संत के दुखी को अब न रखन हार नान संत पावे ता ले उबार संत का दुखी अम बिल्लाए ज्यो जल विहून मछली त्रिफड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो भाव की धन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटे केला जम वाड़ तिल खेत माए दुवेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सत मिथ्या कहत किरत निंद का तुर ही पया नान जो तिस भावे सोए थे या संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दर गए मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले निरसा संत के दोख न तिष्ठे कोए जैसा भावे तैसा कोई होए पया किरत न मिटे कोए नान जाने सच्चा सोए सब कर तिसके वो करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार की उस्तत करो दिन रात तिसे त्यावो साच करा सब कुछ वरते तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे

जाने प्रभु अपने का हुक्म जाने तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका हुक्म कह एक न जानो आठ पहर प्रभु से हजूरे कौन आनंद से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंतन है अपना तिन जाने जिन जाने अपना प्रभु बुझाता सो जन सर्व दो का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिसका दर सब पाप मिटावे अवर सियान सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लागा वन जान न होवी तेरा नान तिस जन के पूजो सद पैरा श्लोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सग उतरे नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करे प्रतिपाल सेवक हो गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिक्के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हटे सतगुर सिक्को नाम धन दे गुर का सिख वटभागी हे सतगुर सिक्काल पल सुवारे नानक सतगुर सिक्को जी नाल सुमारे गुर के ग्रह सेव जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आप उसको कर कश ना जनावे हरा ना हृदय सत्यावे मन में चे सतगुर के पास ते सेव के कार जरा सेवा कर तो ने कामी तिसको होत प्रा स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मतले बीस विश्व गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नावन कबार गुर को बल जाओ सर्वदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जान जन्म पार ब्रह्म एक है आप नहीं परम सह सियाण भलै न जाइये नानक ऐसा गुरु भागी पाए सफल दर्शन पीत पुनीत पर सत जन गातन मरीत भेड़ संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे सुन कर वचन कर्ण गाने मन संतो गात प्रिया ने पूरा गुर आखो जाका मंत्र अमृत दृष्ट बेके संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मिलाए जे माए कुस्तत नेक सात पुरख पूर्ण विवेक आओ बोल न पौचित प्राणी गम गोचर परम निर्वाणी निराहार निर्वय सुदाय ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करे चन कमल हृदय सिमरे

l'inganno del già. Jab hovat prab keval tani tab band mund ko kis ko gani jab ekar gam par tam narsur ko kono tar jab nirgun prab saiswai nan na jab nirgun prab saiswai tab se sakt kaho kar thai jab aap hai aap apni jyot tar hai tab kavun nidar kavun kad dare apne chalte aap karne har nanak thakur gam par evna sisu ke apne asan tai jan man ko kaam nasan जब पूर्ण करता प्रसोए तब जम की त्रास कहो सोए जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर का दे तब कौन छे कौन बंधन बाधे आपने आप ही चर्चा नान ग्रापन रूप आप ही पर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैर कहो कहत होता जय निरंजन कार निर्बाण तय कौन को मान कौन अमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिदर लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तय किसे भू कम तृप्तावे कर्ण करावन करने हार नान करते का ना ही समार जब अपनी शोभाए अपन संग मनाई तब कवन माए बाप मित्र सुद भाए जय सर्व कला आपे प्रवीन दय वेद देव का कौचीन जब अपने आप उधारे तो सगन सगन का विचारे जय आपने जापन आपने रहता है कौन ठाकर कौन कहिए चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय शल शेद भेद समाया हुआ किसे भी आपत माया आप उसको आपे आदेश दय गुण का नाई प्रभे जय कह एक एक भवंता दय कौन चिंत किस लागे चिंता जय आपने आप पति आरा दय कौन कदे कौन सुनने आरा बहु बेअंत ऊंचे ऊंचा नानक आप उसको आपे पऊचा

रूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रो रोगे मस्त शनान नमो मंत्र मंत्र नमो जंत्र जंत्र नमो इष्टे नमो तंत्र तंत्र सदा सचदान समर्पणासी नूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करता दुद हरदंग हरता

समस्तु पराजी समस्तम तेरा जो चाची छंद जले हैं थले हैं पीते हैं पै हैं प्रभु हैं जू हैं देश हैं पेश हैं भुजंग प्रजा छंद अगाधे बाधे नंदी स्वरूपेर मो सर्वमान्य समस्ति निधान्य नमस्त नराथे नमस्त परमाथे नमस्तवा गंजे नमस्तवा पंजे नमस्तवा काले नमस्तवा पाले नमो सर देसे नमो सर पेसे नमो राजे नमो साजे नमो शाहे नमो महामाय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर भोगे नमो सर जीत नमो सर पीत नमो सर्व ज्ञान नमो परमतान नमो सर मंत्र नमो सर जंत्र नमो सर दर्शन नमो सर कीर्तन नमो सर रंगे त्रिभंगी रंगे नमो जीव जीव नमो विजय खिजय भिजय समस्त प्रसिज कृपाल स्वरूप कर्म प्रणासी सदा सरदा सर हृदय सद नवासी चर प्रसन्न त्वय प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे खल जोगे चल भोगे चल राजे टल साजे खल धर्म लख कर्म सर्वदाता सर्व ज्ञाता सर्व पाने सर्व माने

रूप रंग न जात पात सब जाने के जेब तात मात न जात जाकर तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बकर फिरे चतर चक मानी प्रतीन लोग चौदह के विखे जग जापी जय जाप आ देव नाद मूर्थाप्यो सब जय थाप।

सो भरम रहत भूत लख भेस अंग राग न रंग जाके जात पात्र नाम गर्व गंजन दुष्ट भंजन मुकदाय काम आप रूप अमीक अनुस्त देख पुरखदूत गर्व गंजन सर्व भंजनाद रूप सूत अंग हीन भंग नात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व कोपित पार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जाने जय रूप रंग रेख

चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र भरती।

के विभूत करने के राज प्रवाह हैं, के धर्म तुझा हैं, के शोक बरने के सर्वाव भरने के जगतन कृति है, के शत्रन क्षत्रिय है, के ब्रह्म स्वरूपे के नभो अनुपे के आद अदेव के आप अपेव के चित्रम वहीने के दीने के रोजा के रही में रहा के पाक भी है वह के अमूल गुना के पाक भी है वह की गैबुल गैब है के अमूल गुना है के शहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहिंद है के राज कर रहीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मानी है के सर्वत्र दानी है के सर्वत्र गौणे है के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मानिए से प्रधानिये के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए के सर्वत्र पाने के सर्वत्र मानने के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्वं कली में के परम पही में के अकल आला में के साहिब कुला में के हुसन बजू है तो मामल रजू है हमें सलसला में सली खत मदा में गन्नी मल शिकिस्ते गरीब परस्ते

मुक्त सदा है, विमुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, मृजुक्त अनूप है, निरुक्त सदा है, विमुक्त प्रवाह है, अनुक्त स्वरूप है, मृजुक्त

में त्रिभंगे त्रिका में नृभंगी स्वरूपे सर्वंगे नूपे न पोत्र पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साक्षरी कैम मितो अमी कैम

समस्तल जबाह के साहिब कराह के नरकम प्रणास है बैस्तल निवास है के सर्वल गवन है मेसल रन है तमाउल तमीज है समस्तल जी सैम परम परमी सैम।

हृपतापन है, जब जापन है, अकलंकृत है, सर्वकृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्म है, सर्व्यात्म है, आत्म बस है, जस के जस है, प्रजंग प्रजा संद।

नमस्तक प्रणाम समस्त प्रणा से गंजल नामे समस्त निवासे काम विभूते समस्त स्वरूप कर्म प्रणासी सुधर्म विभूते सदा सचिदानंद सदर प्रणासी क्रेमल कुनिंदा समस्त निवासी जाय विभूते जाय करीमे हरिय करिय क्रिय क्रीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर भूते स्वंग स्वंग सर्वदा सर्वयुक्ते दुकाल प्रणासी।

दवैया साहिब श्री सब को सरनायक जाचक ने 101 दवैया दान देव नंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब ताप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जय तुन पापन के बहु पुंज कवेंगे।

जन्म मरण दुख जाए इतना श्री महला पहला शांत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार यंत्र ज्ञान है गुरु ज्ञान साचा थान तीर्थ

सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जेवर दाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया। सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया। इन सचो सच बुझाया, इन सचो

सचो सच ते आया उन्हें मन दे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीशी अगला ने दे में चढ़े सवाया वड़े आई वड़ा पाया वड़े आई

नारी पंचम हरखते साख सुना वह बंगालम माध माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र।

सागराय और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कोंबे हमीर खाष्टम मेघ राग वह गावे है पांचो संग बरंगन लावे है सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावे है आसा गुन गुनी।

अनाद अनाहत जोग जोग एको वेश। एका माई जुग तव्याई तिन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी, एक लाई दीवान, जीव तिस भावै तिवै चला।

प्रचंड तिथे नाद बिनोद कोट आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाट घड़िए बहुत अनूप ता किया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना

Khalistan. Khalistan. Khalistan. Khalistan. Khalistan. Guru Pyari Sath Sangat Ji, Aao. Hun Guru Ghar De Mukh Sevadar, Gyani Dalbagh Singh Ji, Gyani Harpreet Singh Ji, Gyani Baljeet Singh Ji, Unna Mahan Shahidan Nu Yaad Karde Hoye Aaj Da Jo Diwan Sajna. आओ उन्हां तो कीर्तन दे कीर्तन सरवण करिए बुलाओ फतेह वाहे जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह

एक बारी गुरु की संगत बोले, एक बारी मेरे वीर बोलन, ते एक बारी जिहड़ियां बच्चियां पिछे बैठियां ने ये बोलन, चारे पासों गूंजा पा दिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह मेहरामत करन, कोई बोल साडे अंदर चला जावे ते शायद साडे जीवन की कला जिहड़ी ये तब्दील हो जाए।

इस पीठ दे विच गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दर्ज करके इस नूं गुरु का दर्जा दिता। तो कहन तो भाव यह हुकूमत जिहड़ी इहनां सच नूं बर्दाश्त नहीं करदी, सच नूं बड़ी तकलीफ विचों निकलना पैंदा है, सच तां सची तती तवी ते उस नूं बैठना पैंदा है, और झूठ जिहड़ा जहांगीर सिंघासन ते विराजमान सिंघासन ते बैठा है, सच जिहड़ा तुसीं अरदास करदे हो चरखड़ियां ते चढ़ना पैंदा उस नूं, उहदी डिमांड है, मंग है उहदी, बंद बंद कट्टे जांदे ने, सच खोपरियां लुहाईयां जांदियां, तन आरियां ना चराए जांदे, साडी अरदास दे विच सारी चीज जिहड़ी है भरी पई है, ते उधर झूठ जिहड़ा है उह संघासन ते उह बादशाह ने। उन्हां दा काम ही होंदा है, तो सच ते झूठ दा जिहड़ा है ये नतारा जिहड़ा है ये एक गल है, पर भाई गुरदास जी कहिंदे इहदे विच शब्द दे विच जो गुरु अर्जन देव महाराज की बिनती उजागर किया रेंदे गुरदरियाओ विच टाइम जिहड़ा थोड़ा है, तो यह शब्द की व्याख्या बड़ी जबरदस्त है। अगला महीना मैं सारा इत्थे ही हाँ, तो यह शब्द नूं फिर किसे ने पढ़ के ऐतवार अगले, तो इहदी व्याख्या मैं कंप्लीट करांगा, यह थोड़े समय च हो नहीं पानी साहब संगत जी, इस करके पंक्तियां दा नाल जुड़दा हाँ, यह पेंडिंग रहा ड्यू रहा, नैक्सट वीक मैं इस शब्द नूं दोबारा पढ़ांगा और इहदी व्याख्या जिहड़ी है थोड़ी डिटेल दे नाल करन दी कोशिश करांगा। आप जी अपने पावन असीस दास नूं बख्शिश करनी, आप पंक्तियां जुड़दे हाँ।